आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता की।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने चुन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम 5 एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अंबाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

जाने मन, इस वीडियोस में हम फिल्में देख रहे हैं, नहीं रिव्यू करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिंग सीखने के लिए। और आज की फिल्म एक्ट्रेस के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां ना कोई ड्रामेटिक एक्टिंग है ना कोई हीरोगिरी, सिर्फ दो एक्टर्स हैं और उनकी अंदर की भूख। सुधेंदु राय की फिल्म सौदागर, दो लीड एक्टर्स अमिताभ बच्चन साहब और नूतन जी, और ये फिल्म इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो पसंद किए जाए। ये फिल्म इनसे कहती है बस आप सच बोलो। अमिताभ बच्चन साहब का करेक्टर लाउड नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, हीरोइक बिल्कुल भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा लेसन है। बच्चन साहब यहां डिजायर को चिल्ला के नहीं दिखाते, वो डिजायर को दबा के दिखाते हैं, उसे दबाकर रखते हैं। उनकी आवाज कंट्रोल्ड है, बॉडी स्टिफ है, मूवमेंट्स मिनिमल है, लेकिन अंदर अंदर एक भूख चल रही है। डिजायर को एक्टिंग में एक्सप्रेस करने का मतलब लाउड होना नहीं, कभी कभी डिजायर जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। बच्चन साहब का करैक्टर प्यार नहीं करता, वो ओन करना चाहता है, और पोजीशन एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि पोजीशन डायलॉग्स या लाइन में नहीं होता, वो होता है नजरों में, पॉज में, कंट्रोल में। अगर आप पोजीशन को इमोशनली दिखा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। पोजीशन हमेशा इमोशन को दबा के खेला जाता है। अब बात करते हैं नूतन जी के काम की। एक बार बताऊं, ये रोल अगर किसी गलत एक्टर को दे दिया जाता ना तो वीक लग सकता था, लेकिन नूतन जी इसे वीक नहीं बनने देते। उनका करैक्टर कम बोलता है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन वो जानती हैं कि वो क्या दे रही हैं और क्या खो रही हैं। उनकी स्ट्रेंथ नॉइज में नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस में है। स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कभी कभी रिएक्शन कम करना एक्टिंग को ज्यादा पावरफुल बना देता है। सौदागर का सबसे बड़ा लेसन यहीं से निकलता है। बच्चन साहब का करैक्टर कंट्रोल से खेलता है, नूतन जी का करैक्टर एक्सेप्टेंस से खेलता है। एक कुछ लेना चाहता है, दूसरा जानता है कि वो क्या दे रहा। बच्चन अंदर से दबा हुआ टेंशन, और नूतन जी अंदर से साफ क्लैरिटी, और दोनों बिना ड्रामेटिक सीन्स के फिल्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस फिल्म में इंटिमेसी है लेकिन रोमांस नहीं है, और ये एक्टर्स के लिए बहुत एडवांस एरिया है। बच्चन साहब इंटिमेसी को कंट्रोल से खेलते हैं, नूतन इंटिमेसी को समझ के एक्सेप्ट करती है। अगर आप इंटिमेसी को रोमांस बना देते हो तो सौदागर जैसी फिल्म आपके हाथ से निकल सकती है, नहीं? अच्छा चलो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो जरा सोचो, अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहते हो क्योंकि आप अकेला महसूस करोगे, तो उस फीलिंग को लिखो, वही फीलिंग आपको बेटर एक्टर बनाएगी। इस फिल्म को बच्चन साहब के लिए देखो, नूतन जी के लिए देखो, और सबसे ज्यादा अपने लिए देखो। और हाँ, कमेंट में लिखो कि किस एक्टर का काम आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करे वही एक्टर।

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

ही अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें ही शादाब, सन्नाटा पसरा है। गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं, यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। कोई नजराना लेकर आया है।

0: गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी छंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहां केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत, तेरे कारण मेरे साजन।

0: आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।
1: यहाँ

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में, और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे, जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं, देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
2: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
1: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0।

0: मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं, देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
2: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बने।
1: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज गूंजती रहती है और कहती है।

आपके लिए फौजी भाई मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहां तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या कहें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों, उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है। दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं भाई। घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है

लेकिन आप तो अपने दायित्व को बहुत भांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहले में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल क्या कह रहा होता है। उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

और देखते ही देखते छुट्टी के दिन हवा के झोंकों की तरह निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल इन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है। अब तो समय भी देरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हम भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे। कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं उस पथ

हो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने भी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो सफर मेरे शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार मैं आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056613010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल न जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: हाय हाय जट्टी।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, तेरी भंगदा ननाक रेडियो वत्तस्ता,
2: मैनू बिल्कुल सुनता
1: 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: Tunchu Gozan, Namat Asharya Sifar, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Hund.
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
2: You're enjoying 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
5: हर घर

0: सिलसिला चाहतों का यूं ही चलता रहेगा, गीतों का ये मौसम हर पल बदलता रहेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ इस रूहानी सफर में, क्योंकि दिलों से दिलों का रابطہ यही बनता रहेगा। नमस्कार और स्वागत, एक बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाती शुक्रवार की दोपहर मुबारक हो आप सभी को। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे किरणी और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। शुक्रवार का दिन है यानी वीकेंड की दस्तक और हमारी आपकी मुलाकात की एक मीठी सी शुरुआत। और जब शुक्रवार आता है तो रेडियो दस्ता पर एक अलग ही रौनक छा जाती है, क्योंकि आज वक्त है आपके सबसे चहेते शो का।
1: जी हाँ, यानी आपकी फरमाइश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अनु। किरणी जी, सच कहूँ तो पूरे हफ्ते हमें जिस पल का सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है वो यही शुक्रवार है। ये शो सिर्फ एक गानों की लिस्ट नहीं है, यहाँ हम आपकी फरमाइशों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को दिल से महसूस करते हैं। हफ्ते भर हम आपके भेजे हुए संदेशों और फरमाइशों का इंतजार करते हैं ताकि इस शो में उन्हें सिर्फ बजाया ना जाए बल्कि एक नया रूप दिया जा सके।
0: बिल्कुल सही कहा अनु आपने, यहाँ रेडियो दस्ता पर हम आपकी भेजी हुई हर फरमाइश को केवल एक गाने के रूप में नहीं बजाते बल्कि आपकी उन खूबसूरत भावनाओं को, आपके उस प्यार को बहुत ही स्नेह और खुशनुमा अंदाज में बाकी सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आपके लिखे हर शब्द में एक अपनापन होता है, एक कहानी होती है जिसे हम इस माइक के जरिए सब तक फैलाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं।

हमारी सबसे पहली फरमाइश आई है बीडी फ्लोर मेल अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है आशु कौरी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पति पत्नी और वो से गीत। गीत के बोल हैं लड़की साइकिल वाली। इस गीत को मधुर आवाज दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। आइए सुनते हैं इनका ये मन पसंद।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म प्यासा सावन से। गीत के बोल है मेगारे मेगारे मध्य प्रदेश जा रहे, और इस गाने की फरमाइश की है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश, सुनाते हैं आपको एक पंजाबी गीत। गीत के बोल हैं, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। इस गीत को आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। इस गीत की फरमाइश आई है महेश नगर अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम। पेश है ये पंजाबी गीत।

हमारे पास अगली फरमाइश आई है कुमार हीड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सैयद मसरूर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पत्थर के सनम का गीत, जिसके बोल हैं महबूब मेरे तो है तो दुनिया कितनी हसी है। इस गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। सैयद मसरूर के साथ और सुनने वाले श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, अदीब, आफिया और सदाम। लीजिए पेश है इन सभी श्रोताओं का ये पसंदीदा नगमा।

लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु, कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, पवनीत कौर, वरनीत कौर और सारा संधु परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली से गीत। गीत के बोल हैं ये पर्दा हटा दो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगला फरमाइशी गाना जो है फिल्म सुनैना से, जिसके बोल है इन बहारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। इस गाने को आवाज दी है यशोदास ने और ये फरमाइशी गाना हमारे पास आया है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है गीता, किरण, डॉली, राहुल, मोहन, मंजू, नेहा, मधु और संजीव। लीजिए पेश है इन सभी का ये फरमाइशी गाना।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बिन फेरे हम तेरे से गीत। गीत के बोल हैं दोस्त बनकर आए हो, दोस्त बनकर ही रहना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और उषा खन्ना जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है हरिंदर बागड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म देश प्रेम का गाना। गाने के बोल है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। इस गाने को अपने खूबसूरत आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने और साथ ही में इन्होंने हमें इंडिपेंडेंस डे की विशेष भी भेजी है। हमारी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अगर आप भी फरमाइश भेजना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं और हमारा नंबर है 7056413010। नंबर में एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा।
1: लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर। गीत के बोल हैं दिल की ये आरजू थी। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश आई है नेपाल से। भेजने वाली श्रोता है सोनी और इन्होंने भेजी है हमारे पास फरमाइश एक नेपाली सॉन्ग की जिसके बोल है साजन मोरी आएगी। लीजिए पेश है ये फरमाइशी गीत।

नाम बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रूजियो पनिन पसंदीद बगत

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आस्था के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब बालक एंड सी हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बने।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम लेखक शैलेंद्र पर आधारित है। पेश करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किडनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास प्रोग्राम में, जहां अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे और शैलेंद्र के लिखे हुए गीतों की बातें होंगी। गीतकार शैलेंद्र, जो शब्दों का जादूगर था, जिनके गीत हर दिल के धड़कन बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का खास कार्यक्रम उन्हीं के लिखी हुई दो लाइनों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फिलॉसफी है, एक जज्बा है, जो हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। आज का प्रोग्राम इस जादूगर के नाम।

खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे

संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहे समझ में नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ।

जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है, हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर ये तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी किया करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा भी मथुरा के सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वही के कॉलेज से की। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे कि उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है।

सारे हंसे। दरअसल राजकपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रही थी। शैलेंद्र की कविता सुनकर राजकपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वो अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखे, मगर शैलेंद्र ने राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं थी। फिर शैलेंद्र राजकपूर के पास गए और 500 रुपए उधार मांगे। तब तक राजकपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई नहीं हुआ दूसरा, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। वो एक मायने से दूसरे मायने निकालते थे गीत में।

शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात में बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें जकजोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौर निर्देशक भी काम किया। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वो शराब की लत में डूब गए।

गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखे तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छुपे होते थे।

शैलेंद्र तो वो गीतकार है जिन्होंने एक नन्हे शिशु का भी अपने गीतों में ख्याल करा और बड़े जान की शिशु जैसे नींद का जब वे लिखते हैं, आजा रे आनिंदिया तू, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंखों में सपने सजाओ रे निंदिया तो आई। शैलेंद्र एक समावेशी कवि है। उन्होंने तकरीबन हर उस भाव के गाने लिखे जो आम इंसान के जीवन में रोज मौजूद रहते हैं। प्यार, काम, अफसोस, दुख, रोमांच, आप जिस भाव को उठा लाए शैलेंद्र का लिखा कोई गीत आपके पास तक चलकर आ जाएगा। उनकी भाषा सरल है, व्यक्ति को शब्दों के जाल में नहीं फंसाते थे। शैलेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनको 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। शैलेंद्र सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

शैलेंद्र को कलम का कलंदर कहा जाता है। इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहां मरना यहां करने का वादा किया, मगर ये वादा अधूरा रह गया। और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सब से छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था, हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी।

ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को 800 गीत दिए जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ शैलेंद्र के लिखे हुए एक बेहतरीन गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरनी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट शैलेंद्र पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मेरे महबूब, जब तुम रूबरू थे तब तुमसे मिलने की बंदिशें रहीं। तुम्हें छूने की मनाही रही। तुम्हारे दुपट्टे का एक कोना मेरे हाथ आते आते निकल गया, जाने कहां गया, कहां खो गया, कौन ले गया, कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे पास न रह सके, इन हवाओं के संग बहते गए शायद

हम तो मुसाफिर हैं, भटकते हैं अपने ही साए के साथ। ये रहे गुजर अभी खाली है, यहां से गुजरता कोई क्यों नहीं। सिलसिले थे मोहब्बतों के जब रवां, तो जमाने जुदा नहीं थे। आज जब रुक गए कदमों के फासले और मिट गई उम्मीदें, तो हुआ जमाना बेजार। दूर तुम भी हो, हम भी हैं, पर रूहों का यह सफर जारी है।

मौसम था तुम्हारी यादों का और हम पानियों की गोद में जलते सूरज को ढूंढ रहे थे। शायद सूरज के साथ साथ हम तुम्हारी यादों के सफर को तय कर रहे हैं। रज के रुलाना, खुल के हंसाना तुम्हारी शरारतों में शामिल है। जुदाई तो एक बहाना है, कसमें वादे निभाना सर्दियों की धूप जैसी है। कसमें वादे निभाना सर्दियों की धूप जैसी है। टुकड़ों में बट गए हसरतों के मीनार यूं ही बेवजह।

शुक्रिया आपका जो आप हमारे साथ बने रहे इस सफर में। गीतों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विथस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मारहटा। आज के लिए बस इतना ही, और आज एक खास विषय पर आपसे बात करेंगे, और लाया हूं आपके लिए कुछ पंक्तियां, और उसके बाद लूंगा आपसे विदा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। श्रोताओं, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता की आज की प्रसारण सेवा के समापन का समय आ गया है। दिन भर के सुरेले तरानों, विचारों और आदान प्रदान और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के इस खूबसूरत सफर को अब यहीं विराम देने की घड़ी आ पहुंची है। जैसे वितस्ता नदी अपनी पवित्र और अविरल धारा से घाटियों में नवजीवन, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, ठीक वैसे ही रेडियो वितस्ता भी हर रोज आपके जीवन में सकारात्मक विचारों और प्रेरणा की धारा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस विशेष प्रसारण में हमने एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करनी है, और जो है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और उनके सकारात्मक आचरण की आवश्यकता। आइए विदा लेने से पहले आज के इस विचार मंथन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्र निर्माण, युवाओं का आचरण और देश का भविष्य। क्योंकि हर तरफ से युवाओं की बात हो रही है, तो हमने सोचा हम भी आज युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के द्वारा राष्ट्र निर्माण और उनके आचरण की बात भी करनी बहुत जरूरी है। किसी भी देश के उन्नत, उसकी दिशा और उसका स्वर्णिम भविष्य उस राष्ट्र की युवा शक्ति पर निर्भर करता है। युवा केवल देश के नागरिक नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी ऊर्जा और बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं, लेकिन इस ऊर्जा का सही दिशा में लगना ही देश का भविष्य और भाग्य तय करता है। आइए कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। युवा शक्ति और नवाचार का महत्व। चाहे हमारा भारत देश हो या दुनिया का कोई भी अन्य राष्ट्र, इतिहास गवाह है कि क्रांति, विकास और नई सोच की मशाल हमेशा युवाओं के हाथों में ही रही है। शिक्षा, तकनीक, खेल, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्रों में युवाओं का योगदान अतुलनीय रहा है। दूसरा, आचरण और चरित्र की अनिवार्यता यानी सकारात्मक व्यवहार। युवाओं में केवल ज्ञान, कौशल या ऊर्जा होना ही काफी नहीं है, उनका आचरण और चरित्र सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। जब युवा अनुशासित होते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और राष्ट्र की संपदा, वो सीमाओं की रक्षा का भाव रखते हैं, तब वो ऊर्जा देश को तरक्की के शिखर पर ले जाती है। अगला, यदि आचरण सही ना हो तो क्या देश आगे बढ़ सकता है? कदापि नहीं। यदि युवाओं का आचरण भटक जाए, यदि वे हिंसा, नशे, अनैतिकता या नकारात्मकता के शिकार हो जाएं, तो वही असीमित ऊर्जा विनाशकारी रूप लेती है। गलत आचरण से न केवल सामाजिक ताना-बाना बिखरता है, बल्कि देश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति भी कई बार रुक जाती है। दिशाहीन और चरित्रहीन युवा शक्ति किसी भी समृद्ध देश के लिए अच्छा नहीं है और देश को पतन के गर्त में धकेल सकती है। इसलिए बिना सकारात्मक आचरण और नैतिक मूल्यों के कोई भी राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश युवा देश है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के युवा सकारात्मक सोच के हैं और देश को आगे लेके जाएंगे। और जैसे हम कहते भी हैं, 2047 तक भारत देश
आत्मनिर्भर होगा, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज भी देखिए कितने भी स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं और बहुत तरक्की से वो स्टार्टअप चल रहे हैं, और वो सारा युवाओं का ही काम है। तो ये था आज का विषय, उम्मीद करता हूं आपको इस विषय से कुछ जानकारी मिली होगी। दिन भर की इन विचारणीय बातों और खूबसूरत यादों को समेटते हुए अब समय हो चला है आप सभी से आज के लिए विदा लेने का। रेडियो विदस्ता का ये अटूट रिश्ता और सकारात्मकता का ये संदेश आपके दिलों में हमेशा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ ये पंक्तियां आपके लिए लाया हूं। और पंक्तियां यूं हैं, विदस्ता की बहती पावन धारा की तरह गूंजते रहे दिल में गीतों का ये संसार, फिर मिलेंगे कल एक नई भोर की किरण के साथ, तब तक संजो कर रखिए रेडियो वितस्ता का प्यार। जी हां दोस्तों, तब तक संजो के रखिए रेडियो वितस्ता का प्यार। यह था आज का विषय और आज की पंक्तियां। और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 15 अगस्त 2026 शनिवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर, वंदे मातरम से शुरुआत होगी। लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और 7:05 पर होगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस स्पेशल 15 अगस्त 2026, पेश करेंगे भारत सोपोरी और आरजे किरने। 8:30 बजे आप सुनेंगे किरने के साथ रेडियो पॉडकास्ट माँ बाप जिंदगी के असली हीरो, यह होगा विषय और जरूर सुनिएगा ये पॉडकास्ट। और 9:30 बजे दोस्ती अनमोल एपिसोड 1 होगा, और संगीत की सभा जारी रहेगी। और 2 बजे आप सुनेंगे कृषि समाचार, 6 बजे भक्ति संगीत, और 6:30 बजे शाम में गजल। 7 बजे पुनः प्रसारण होगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस स्पेशल 15 अगस्त का, और 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुहाना सफर। हर दिन की तरह कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है रेतीला आशिया। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये जो जानकारी मैं आप तक लाया, ये तैयार की आप सभी श्रोताओं के लिए हमारे

और नई प्रेरणाओं से भरी हो। अपने विचारों और आचरण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और सुनते रहें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।